सुबह मंदारम रैक तिबना पासल प्रेम आख हुआ मारो ना लियोम कर दहे तब मत मत काया मंत्रने सदा वासना नुब मठ दिन तिबन तुरु ऐह मलियल तिबुना पासल अरियन कल बाला हिटिया मीटर देसिया पमन एक कुड़े क्याटिन यन मत के तुल मासे कट विचरक सीमा होना वचने अक्वत नो किया ऐ अन्न गया अद्धत ऐ हम कले किया ला दान्ने ने तू ऐ ट अतीत ऐ ट में अन्न इड दोन्ना अदत मंगे तो टेडी हम वेला ऐ मो अगेन सीन हवक नगा निक में अना पूरा एवा सुंदर मात कवितराई तरंगा Eva Hina Viterai Badulin Lirangan Basnaika

सुबह संधावा का आदर नहीं है तो बतिया ते मापियाँ पड़ी दवसल पे नूना आदरे सहाय नोबट गया म हरे आदरे के तरह सीमा उन्हें सेने आस पसो या हुए न तो समग्र हादवित चे ऐठ महेठ दुएना आदरे ये आदरे करने के नागे हिदार पावा हम हुस्मा गाने में होया ना एक आदरे है ठी एत एक दवसक ये आपरी मित्र सेने आस पहले दुरे इन पला यानत इड़ती है ना है भाई ये तो कुछ वाई रे दुक्के कांडुला ये तो कुछ तिबिला तिये ने आदरे देखिए ने प्रश्न ये ना मां क्या ने आदरे अतहरी लगे आत आदरे आदरे में वैन्नो ने किया ला ये मैं क्या ने संजीव नुमरे लिए इन ඔබට පුළුවන් නම් වරු ගණන් ළඟ ඉන්න නොසෙල්වීම ඉන්ද්‍රජාලික මට පුළුවනි කාලයම නවත්තන්න ඇලඩින්ගේ පුදුම පහන භූතයවනේ නෑනේ ඇඟට ආදරේ මහ ගොඩාක් තිබුණාම ඇති පිළිගන්න මගේ ප්‍රේමවන්තයෝ වරු ගණන් ළඟින් ඉන්න නොසෙල්වීම ඉන්ද්‍රජාලික මට පුළුවනි කාලයම